0: डोंट माइंड, लेकिन इतना अच्छा मौसम है और तुम इन बीमारियों के अलावा और कुछ नहीं सोचता। गुलफाम साहब के फैन हो, कोई शायरी वायरी नहीं आती क्या?
1: बिल्कुल आती है, सुनाओ।
0: सुना।
1: अर्ज है, दवा भी काम ना आए कोई दुआ ना लगे, दवा भी काम ना आए कोई दुआ ना लगे, मेरे खुदा किसी को प्यार की हवा ना लगे। आदाब।

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। वो देखो,

इसे देखो, दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं। मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
2: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6।
3: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
2: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6।
4: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी। हम आपके बच्चे को एक मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासित और नैतिक मूल्यों का ज्ञान उपलब्ध करवाते हैं, जिससे आपके बच्चे का समग्र विकास हो सके।
5: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल
4: आपके बच्चे को देता है स्मार्ट और गुणवत्ता शैक्षणिक व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा अध्यापन, सभी विषयों की सुसज्जित अलग अलग प्रयोगशालाएं जैसे कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए नियमित अतिरिक्त गतिविधियां जैसे संगीत, नृत्य, चित्रकला, शारीरिक विकास के लिए विद्यालय के अंदर खेल, आवागमन हेतु वाहन की समुचित व्यवस्था, सकुशल और सुरक्षित वातावरण, पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष ध्यान।
6: अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए आज ही एडमिशन करवाएं बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल।
0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: इस वक्त आप ट्यून कर रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। और दोस्तों अपना रेडियो सेट छोड़कर ना जाइए, आपके साथ आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना जल्द करेंगे आप सभी की फरमाइशों को पूरा। बने रहे हमारे साथ रेडियो डीएस पर। फिलहाल आप कार्यक्रम सुन रहे हैं लू फरमाइश
1: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशंसा अग्रवाल, 9th क्लास।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS, 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।

गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम, नमस्कार दोस्तों, मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीणा। दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का तड़का। दोस्तों सुबह के 10 बज चुके हैं, लेकर हाजिर हुई एक नई ऊर्जा, नई जानकारी, बेहतरीन गीत संगीत का भरपूर आपका मनपसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश। आपका दिन शानदार बीत रहा है और आप अपने काम को उत्साह से करेंगे और साथ में जुटेंगे। हमारी कोशिश है कि अलग अलग कुछ समय तक हम आपके साथ हमारा समय साझा करें और उपयोगी जानकारी, प्रेरणादायक बातें, स्थानीय खबर और सरकारी विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी आपको दे। फिलहाल कार्यक्रम को करते हैं आरंभ। गंगापुर सिटी का फिलहाल तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के साथ, लेते हैं एक नई कॉल।

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं।
0: सेनाज।
1: सेनाज जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: मुझे कॉलोनी।
1: बताएं सेनाज जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: क्यों बोल रहे हैं? पलक देखूं।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं मैम, आपकी फरमाइश है। सॉन्ग रेडियो डीएस में कॉल किया।

0: more entertainment.
1: हर बीट में है शहर का कमाल. DS 89.6 शहर की धुन.
2: हेलो,
3: गुड मॉर्निंग सर. सवाई माधोपुर से मोनिका बोल रही हूँ. गाना है जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है.
2: गुड मॉर्निंग मोनिका जी, सुना रहे हैं हम आपकी फरमाइश का बेहतरीन सर. सॉन्ग रेडियो डीएस में कॉल किया, धन्यवाद.
3: शुक्रिया सर.

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
2: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6।
3: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
2: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6
4: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश का इस फोन। हेलो
5: हेलो
4: जी नाम बताओ। जी नाम बताएं।
6: चौधरी निवेदन कर रहा हूँ सर।
4: चौधरी जी बताएं कहाँ से बात कर रहे हैं।
6: शिवाजी से आज कर रहे हैं।
4: बताएं सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप।
6: गाना तो सर रेडियो डीएस के लिए सुपर हिट लाए हैं।
4: बताएं सर
6: जरा नजरों से कह दो जी।
4: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं सर।
1: सौरभ मीना।
0: सौरभ जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मैं कैमा से बात कर रहा हूँ।
0: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: ब्लैक राइड।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश पे।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
0: रेडियो डीएस जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस। यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: कुशल जी नमस्कार।
2: जी नमस्ते। नाम बताएं सर आपका।
1: नाम तुलसीराम मीना, ग्राम पीलूखेड़ा से।
2: तुलसीराम जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप।
1: मेरी आँखों में बस गया कोई रे।
2: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश का बेहतरीन सा सॉन्ग रेडियो डीएस में। कॉल किया, धन्यवाद।

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं। माही जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: गलियां तेरी गलियां।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पे। सो

0: हेलो,
1: आप बताएं।
0: डोली
1: डोली जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
0: मिर्जापुर से।
1: बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: पीर पराई समझे।
1: सुना रहे हैं मैम आपकी फरमाइश से।

दोस्तों वक्त हो चुका है 10:33 का। इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 34 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश। दोस्तों हमारी स्टूडियो कॉलिंग लाइन चालू है, आप कॉल करें, अपनी फरमाइशों को दर्ज कराएं, हम आपकी फरमाइशों को जल्दी ही पूरा करेंगे 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: हेलो हेलो
1: हेलो जी,
0: जी नाम बताएं।
1: नमस्कार, राजेश कुमार बोल रहा हूँ।
0: नमस्कार राजेश जी, कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मैं गंगापुर ही आया था, मैं सुन रहा था, मुझे एक गाना सुनना था।
0: अच्छा अच्छा, बिल्कुल सुना रहे हैं राजेश जी, आपकी फरमाइश का। गाना कौन सा है?
1: ये गाना है उसका, हाथी मेरे साथी का।
0: हाथी मेरे साथी का कौन सा गाना है?
1: नफरत की दुनिया को फूल।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं राजेश जी, आपकी फरमाइश का। टाइम रेडियो डीएसएफएम पे पहुंचे, धन्यवाद।
2: 96 डीएसएफएम पे,
3: यहां हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस 89
2: शहर का नया मैजिक, रेडियो डीएस 89.6।
4: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें, 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें, 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
2: शहर का नया मैजिक, रेडियो डीएस 89.6।

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं।
0: सर मेरा नाम पायल जी है।
1: पायल जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: गंगापुर सिटी से।
1: बताएं पायल जी, कौन सा गाना सुनना है?
0: बलम मेरो रखे है पिस्तौल, धड़ाधड़ गोली चलावे।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं पायल जी आपकी फरमाइश।

0: का
1: योगेश जांगड़े पे, मैं करा छत्तीसगढ़ से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
1: फिल्म द ट्रेन से सुनवा देंगे, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी।
0: ओके सर, सुना रहे आपकी फरमाइश पर ये गाना।
1: धन्यवाद,
0: वेलकम।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर।
2: हेलो सर, नमस्ते
3: जी। नमस्ते, नाम बताएं सर।
2: गंगाधर सावंकर, नांदेड़, महाराष्ट्र।
3: गंगाधर जी, बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आज?
2: वो शंकर मेरे कबूंगे दर्शन तेरे, बैराग फिल्म का सर।
3: बिल्कुल सुना रहा हूँ सर आपकी फरमाइश।

0: जी सर नमस्ते, नाम क्या है आपका?
1: शिवम गंगापुर।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर? ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो DS, 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर,
4: शहर का नया मैजिक। रेडियो DS 89.6।
5: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें, 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें, 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
4: शहर का नया मैजिक रेडियो DS 89.6।

0: बढ़ता ही जाए।
1: नाम बताएं
2: जी। मेरा नाम चाहत शर्मा है।
1: चाहत शर्मा जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: जी मैं गंगापुर सिटी मोहकला से बात कर रही हूँ।
1: चाहत जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
2: शीशा।
1: शीशा सॉन्ग?
2: यस
1: बिल्कुल।
3: हेलो
4: हेलो। नमस्ते।
3: नमस्ते, नाम क्या है आपका?
4: पलक।
3: कहाँ से बात कर रहे हो पलक जी?
4: गंगापुर सिटी।
3: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
4: शीशा सॉन्ग।
3: ओके मैम, सुना रहे आपकी फरमाइश पर ये गाना।
4: थैंक यू।
3: वेलकम।

0: जी नाम बताएं सर।
1: रफीक खान बोल रहा हूँ, लोग मस्जिद के पीछे से।
0: रफीक जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: आ जाए तुझको पुकारे मेरे गीत रहे।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश।
1: बिल्कुल सर।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: हेलो हेलो
3: नमस्ते।
2: नमस्ते, नाम बताएं आपका।
3: अमन मीणा।
2: अमन जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
3: गाना
2: बताएं, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
3: दिलजीत सिंह दोसांझ का गोट गाना।
2: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश पे।
4: What's up, dog?
5: Shit, bro, this tune in the wind. What's good with it?
4: Watch out, man. Watch out, DLG coming, man.
5: Oh, word.
4: They say he the GOAT. He all the way tapped in.
5: Yeah, dog, he killing the game.
4: Oh, DLG, watch out.

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं।
0: शिवम सैनी।
1: शिवम सैनी कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: मिर्जापुर सिटी।
1: बताएं फिर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: मिलेगा से भरा मेरा दिल।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर।

0: हेलो सर नमस्कार
1: जी। नमस्ते, नाम बताएं आपका।
0: मैं फरमान खान अलीगंज से बोल रहा हूँ, सूढ़े वाला।
1: अलीगंज से फरमान खान जी, बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
0: मुझे गाना सुनना है सर, वो आज मौसम बड़ा बेईमान।
1: आज मौसम बड़ा बेईमान है, मौसम खूबसूरत भी हो रहा है, और सुना रहे हैं हम आपकी फरमाइश का बेहतरीन सा सॉन्ग रेडियो डीएस में। कुल किया धन्यवाद।
0: ओके सर।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं सर।
1: नमस्कार।
0: नमस्ते, नाम बताएं आपका।
1: मेरा नाम भवानी सिंह कटारा है।
0: भवानी सिंह जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: गंगापुर सिटी से।
0: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का।
0: बिल्कुल, सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश का ये गाना।

0: हेलो।
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं।
1: खुशी।
0: खुशी जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गंगापुर से जी।
0: बताएं खुशी जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: तेंदुपोना जी दिल।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं खुशी जी, आपकी फरमाइश।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
2: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडिंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन DS, आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। नाउ आई नो दैट व्हाट इज रियल फाउंडेशन। द फैकल्टी ऑफ DS इज वेरी एक्सपीरियंस एंड सपोर्टिव एंड स्टडी मटेरियल इज डिजाइन स्ट्रेट टू द पॉइंट इन क्वालिटी। रेगुलर डाउट क्लासेस एनहांसेस आवर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग फॉर बेटर फ्यूचर एंड सिलेक्शन इन हायर एग्जाम्स लाइक JEE एंड NEET। लेट्स स्टडी विद अस फॉर बेटर करियर बिल्डिंग।

0: हेलो
1: जी नमस्ते।
0: जी नमस्ते, नाम बताएं सर आपका।
1: जी ठंडी राम गुजर बोल रहा हूँ। राम
0: ठंडी राम जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप रेडियो डीएस से?
1: सर गाने के बोल है टीका शंकर जी की बूटी अच्छा खुल गई।
0: बिल्कुल सुना रहा हूँ सर आपकी फरमाइश का बेहतरीन।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस।
3: DS Science Academy, where your dreams turn into reality. 12th Board Science 2026, शानदार नतीजे। टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27, क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। DS Science Academy, FCI Godown Road, Gangapur City, near Sainik Nagar and Nasiya Colony. Sampark karein 800-55-98-377. Iske alawa 99-834-13111.
0: 89.6 Radio DS, jahan har frequency par hai Gangapur City ka asli flavor.
4: हेलो।
5: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
4: कोमल।
5: कहाँ से बात कर रहे
4: हो? गंगापुर सिटी।
5: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
4: ताल से ताल मिला।
5: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर।

0: हेलो
1: हेलो, हाँ जी नाम
0: मॉर्निंग
1: आपका
0: रोहित,
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: आदर्श नगर।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: नैन कटोरे पागल डोरे।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS।
3: DS Science Academy, where your dreams turn into reality. 12th Board Science 2026, शानदार नतीजे। टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, DS के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27, क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। DS साइंस एकेडमी, FCI गोडाउन रोड, गंगापुर सिटी, नियर सैनिक नगर एंड नसिया कॉलोनी। संपर्क करें 8005598377, इसके अलावा 9983413111।
4: हेलो,
5: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
4: नाम अजय सैनी।
5: कहाँ से बात करो?
4: गंगापुर सिटी।
5: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
4: सुपर मी सॉन्ग।
5: सुपर
4: मी?
5: ओके सर, सुना रहे हैं फरमाइश करेगा ना।
6: रिलैक्स रिलैक्स, आई एम जस्ट जोकिंग।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: गुलशन।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: बंठाने चली देखो ये जाती है।
1: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।
0: थैंक यू।

0: कहाँ से बात कर रहे हो? कौन सा गाना सुनना चाहोगी? कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: मारी जिंदगी बनावे दिल।
0: ओके, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करिएगा ना
1: जी। अभी

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस।
3: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
4: कृष्णा मीना।
3: कहाँ से बात कर रहे हो?
4: गंगापुर सिटी।
3: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
4: गाना ओडनी ओड के नाचू।
3: ओके,
4: कौन से नंबर पर है?
3: रिकॉर्डिंग है सर।

0: सकता हूँ?
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: मोनिका।
1: कहाँ से बात कर रही
0: हूँ? क्या,
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: रेलवे कॉलोनी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: डोला रे डोला, टंडोला मंडोला।
1: मार आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
2: हेलो
3: हेलो।
2: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
3: मेरा नाम मुश्ताक है, मैं गंगापुर सिटी से बोल रहा हूँ।
2: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
3: क्रांति फिल्म का गाना सुनाओ, जिंदगी कितना टूटे लाड़ी प्यार कर ले तो गाड़ी।
2: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। करिए गाना रेडियो DS में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: आदित्य सहरवा।
1: कहाँ से बात कर रही हैं?
0: गंगापुर सिटी से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: कल्पल सॉन्ग।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: आरती।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: नसिया कॉलोनी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे मैम?
1: होपलेस।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करेंगे।

0: हेलो
1: हेलो नमस्कार जी।
0: नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
1: हिल्लू टेलर सलेमपुर से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
1: गाना कहाँ से मिलोगे, कहाँ मिलोगे
0: गाना, कहाँ मिलोगे?
1: जी भजन।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। करिए गाना रेडियो में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ठीक।

0: जय इस छोरे गल्ला सेटिंग हो जा जी सा आ जा।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस।
4: DS Science Academy, where your dreams turn into reality. 12th Board Science 2026, शानदार नतीजे। टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27, क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम।

0: हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: अनस।
0: कहाँ से बात कर रहे
1: हैं? गंगापुर सिटी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: मैं बारिश का मौसम।
0: ओके,

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: सूरज सैनी।
1: कहाँ से बात कर रहे?
0: गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: हमारी स्प्लेंडर भी फेमस है गाने कराने में।

0: दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे

0: पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस।
4: डीएस साइंस एकेडमी, वेयर योर ड्रीम्स टर्न इनटू रियलिटी। 12th बोर्ड साइंस 2026 शानदार नतीजे। टॉपर मानव शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27 क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम।
5: गुड आफ्टरनून दोस्तों, वक्त हो चुका है एक बज चुका है। इस वक्त आप मेरे साथ टोन करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम हेलो फरमाइश। अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे आपका मन पसंद कार्यक्रम नहे तराने 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस।

अब वक्त हो चुका है 1:08 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम नए तराने। दोस्तों नए तरानों के बीचों में बातें करते हैं कि बरसात के मौसम में हमें अपनी सेहत का कैसे ख्याल ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों बरसात के मौसम में हरियाली, ठंडी हवा, सुकून मौसम लेकर आता है, लेकिन ये मौसम अपने साथ कई बीमारियों को भी लेकर आता है, जैसे सर्दी है, जुकाम है, वायरल है, बुखार है, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड और पेट से जुड़ी हुई समस्या। इस मौसम में अपनी सेहत का खास ध्यान रखें। हमें ताज़ा और गर्म भोजन करना चाहिए, बासी खुला रखा हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। फल वे सब्जी अच्छी तरह धोकर उपयोग में लेना चाहिए। साफ वे सुथरा उबला या फिल्टर हुआ पानी पिए, दूषित जल को ना पिए, उससे कई बीमारियों का कारण बन सकता है। बारिश में भीगने से बचते हैं, यदि बारिश में भीग भी जाएं तो अपन पहुँच कर तुरंत घर पर कपड़े को लेकर और अपने शरीर को बहुत अच्छी तरह सुखा लें। बरसात के मौसम में जगह जगह सड़कों पर भी नालियों में गंदा पानी जमा होने के कारण मच्छर घरों में हो जाते हैं, तो मच्छर से बचने के लिए घर के आसपास जमा हुआ पानी को भी मच्छरदानी रिपेक्ट यानी पूरी मोरी के पर कपड़े पहने ताकि वे डेंगू वे मलेरिया जैसी बीमारियों से बचे। हाथ वे स्वस्थ रखे हर गर्मियों के बरसात के मौसम में खाना खाने से पहले अपने हाथ वे पैरों को साबुन से धोकर आए। बरसात के मौसम में ठंडी वे ताजगी हवा के कारण हमें बरसात में बहुत तनाव से वे बहुत अच्छी तरह नींद वे स्वस्थ रखने में मदद करता है। बरसात के मौसम में बीमारियों का एक तरह ये बीमारी लेके आता है,

शरीर में तेज दर्द जैसे लक्षण हो तो स्वयं हमें डॉक्टर की जाए और हमें दिखाना चाहिए। धन्यवाद। सुनते हैं नहीं तरह ने कार्यक्रम 89.6 रेडियो।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।

0: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS।

सो वक्त हो चुका है, दो बज चुके हैं इस वक्त। आप मेरे साथ टून कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी कतरका में, आपकी रेडियो दोस्त आरजे फलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 38 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम नहे तराने, अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम भूली विसरी यादें 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डी।
1: पुराने जमाने की बात है, एक गांव के कोने में एक गरीब सा मोची रहता था, तन्हा, बेसहारा और बिल्कुल अकेला। दिन भर लोगों के जूते सिलकर जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उसी से अपना गुजारा करता। जिंदगी मुश्किलों से भरी थी, इसलिए उसने कभी शादी का सोचा तक नहीं था। एक दिन धूप दोपहर में उसका दिल बहुत चाहता कि आज गर्मा गर्म खिचड़ी खाए। काफी दिनों से उसने खिचड़ी का स्वाद नहीं चखा था। वो बाजार गया, चावल और मूंग की दाल खरीद लाया। घर आकर बहुत शौक से खिचड़ी पकाई। जब खिचड़ी तैयार हो गई उसने एक थाल में निकाल कर रख दी कि थोड़ी ठंडी हो जाए। फिर उसने सोचा कि तब तक सिलाए हुए जूते लोगों को देकर आता हूँ। वो घर का दरवाजा खुला छोड़कर निकल गया। उस वक्त एक भूखा गीधर जंगल से भटकता हुआ गांव की तरफ आ निकला। उसने मोची का घर बिल्कुल खाली देखा तो चुपके से अंदर घुस गया। थाल में पड़ी ताजा खिचड़ी देखकर उसकी तो खुशी का ठिकाना न रहा। वो तो कई दिनों से भूखा था, बिना सोचे समझे खिचड़ी पर टूट पड़ा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इसी बीच मोची जल्दी जल्दी वापस आ गया। वो भी बहुत भूखा था और खिचड़ी खाने के लिए बेताब। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि एक गीदड़ उसकी खिचड़ी चबा रहा है, उसका गुस्सा आसमान को छू गया। उसने फौरन दरवाजा बंद किया, गीदड़ को पकड़कर एक रस्सी से बांध दिया और हाथ में मोटा डंडा लेकर उसकी मरम्मत शुरू कर दी। थोड़ी देर मारकर वो थक जाता, फिर अपना काम करता, फिर वापस उसको पीट देता। गीदड़ रस्सी में झूलता हुआ सोच रहा था कि अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो मेरी जान बचेगी तो बचेगी। सुबह तक मोची का गुस्सा कम ना हुआ। जब वो काम पर गया, गीदड़ ने सोचा कि अभी मेरा मौका है। उसने एक चाल चली, वो झूठी आवाजें लगाने लगा जैसे अपने साथी गीदड़ों को बुला रहा हो। जंगल पास ही था, बाकी गीदड़ उसकी आवाज सुनकर चीखने लगे। उनमें से एक गीदड़ उसका पुराना दोस्त भी था। उसने पहचान लिया कि ये मेरे दोस्त की ही आवाज है और गांव की तरफ भागा आया। मोची के घर तक पहुंचकर उसने अंदर झांका तो उसका दोस्त रस्सी में जकड़ा हुआ था, फूला हुआ जिस्म, सूजे हुए हाथ पांव। उसने पूछा, यार ये हाल क्या हो गया? रस्सी में बंधे गीदड़ ने
0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS।
3: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी।
4: ये DS साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है और कक्षा 1 से 8 या इससे आगे तक शिक्षा प्रदान करता है। मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासन और नैतिक मूल्यों पर जोर, स्मार्ट और गुणवत्ता वाली शिक्षा व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापक, अलग अलग सुसज्जित लैबोरेटरीज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब आदि, सर्वांगीण विकास के लिए अतिरिक्त गतिविधियाँ, संगीत, नृत्य, चित्रकला, खेल सुविधाएं और शारीरिक विकास पर ध्यान, सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण।
0: वक्त हो चुका है 3:00। इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 38 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों, अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम भूली बिसरी यादें। अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम बैक टू बैक गाने का 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS।
2: बचपन पब्लिक सेकेंडरी।
3: गुड इवनिंग दोस्तों, वक्त हो चुका है 4 बज चुके। इस वक्त आप मेरे साथ टोन कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 38 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम बैक टू वैक गाने का, अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे आपका मनपसंद कार्यक्रम राजस्थानी 89.6 रेडियो डीएस पर।

दोस्तों 4:02 का समय हो चुका है। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 38 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों हमारी स्टूडियो कॉलिंग लाइन चालू हो चुकी है, आप कॉल करें और अपनी फरमाइशों को दर्ज कराएं।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
2: दोस्तों वक्त हो चुका है 4

0: 9:29 का इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस और दोस्तों वक्त हो चुका है आपके मनपसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो डीएस पर।
1: सारा नमस्कार।
2: नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
1: जी मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिटी मथुरा से वार्तालाप कर रहा हूँ। दीदी आप कैसी हैं?
2: सर मैं ठीक हूँ, और आप कैसे हो? बारिश वारिश हुई क्या? नहीं हुई अभी तक।
1: अरे दीदी यहाँ बारिश नहीं, आग बरस रहा है, प्रचंड धूप है। और भगवान
2: सुबह मेरे पास एक मैसेज आया था सुबह नेट कॉलिंग के द्वारा कि बारिश है मथुरा माऊ, बारिश हो रही है, थोड़ा मौसम हो रहा है सुबह से।
1: बिल्कुल बारिश नहीं हुई दीदी, बिल्कुल ठंडे धूप है और भीषण गर्मी है।
2: आज सुबह थोड़ा थोड़ा मौसम हुआ है यूं बोल रहे थे।
1: मैं तो सुबह से टहल रहा था, बाहर ही था।
2: तो कोई और सुबह मथुरा क्या बहुत बड़ा है तो दूसरी जगह हो रहा?
1: हाँ, किसी और होगा। जी जी
2: हाँ जी, बताइए कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: निबोड़ा निबोड़ा सुना दीजिए। जी जी
2: ओके सर, सुना रहे आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद आपका दिन मंगलवार।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: गुलशन।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: जलेबी सा जुड़ा खिले जुड़े पे कली।
1: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो
1: हेलो, गुड इवनिंग मैम।
0: गुड इवनिंग सर, नाम क्या है आपका?
1: मैम मेरा नाम है आयुष सलमानी।
0: कहाँ से बात कर रहे हो सर?
1: सिलीगढ़ गंगापुर सिटी से मैम।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
1: आज गाना सुनना चाहते हैं हम उनसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक्स मैम।

0: और कैसे हो?
1: हम अच्छे दीदी।
0: हाँ जी, आपका नाम क्या है दीदी?
1: मेरा नाम समता जादौल है, बाट क्लास से बोल रही हूँ दीदी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे दीदी?
1: गाना सुनना है लैला को भूल जाएंगे, मजनू को भूल जाएंगे, आने वाले प्रेमी अब कसमें हमारी खाएंगे।
0: दीदी गाना तो बहुत

0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: निकिता।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: रेलवे स्टेशन।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: तेरी आंखें मधुशाला।
0: ओके मैम, सुना।

0: मैम नमस्ते।
1: नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
0: ऋषभ शर्मा।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: करौली से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
0: गाने का नाम है रूट्स।
1: रूट्स?
0: यस।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी सर, मैं इस पर ये गाना।

0: हाँ जी, नाम क्या है सर आपका?
1: नाम तो बाबू खान है।
0: कहाँ से बात कर रहे हो सर?
1: गंगापुर।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: जी नमस्ते।
1: सर नमस्ते, सर नाम क्या है आपका?
0: संजय राम बोल रहा हूँ।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: हाँ गांव बदर क्या से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
0: गाने के बोल है ये चांद कोई दीवाना है कोई आशिक़ खुराना है।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।
0: ओके सर।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: हेलो,
1: नाम क्या है सर आपका?
0: आवाज आ रही है मैम?
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: नाम है नीरज किंग।
1: कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: गाना
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
2: हेलो,
0: गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: सिद्धू मूसेवाला 295।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

0: 49 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे कार्यक्रम हेलो फरमाई 89.6 रेडियो डीएस पर।
1: करेगा तरक्की पुत हेत मिलूगी मीडिया कई बन बैठे आज देखवार
2: मीनाक्षी
3: कहाँ से बात कर रहे
2: हैं? गंगापुर से।
3: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
2: नागजरे की धार।
3: ओके मीन तुम्हारे यहाँ की फरमाइश करें।

0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: सविता।
0: कहाँ से बात कर
1: रहे हो?
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: चांद के पार चलिए।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। परिवहन, हेलो।

0: हेलो, हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: कल्पना।
0: कहाँ से बात कर रही?
1: गंगापुर से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: कहने को जश्न बहारा है।
0: वो से नाम सुना रहे आप?

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: घर तो हम साफ करते ही रहते हैं, खुद भी नहा लेते हैं, लेकिन फिर भी पता है कहीं ना कहीं से बैक्टीरिया हम तक पहुंच ही जाते हैं। मैं हूं आरजे खुशी। पता है क्यों? क्योंकि इस मोबाइल को हम कभी साफ नहीं करते, जो ईयरफोन हम अपने कान में लगाते हैं उनको कभी साफ नहीं करते, और इन्हें साफ करना सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए, जिस भी चीज का आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक आइटम का, उन सब की सफाई उतनी ही जरूरी है जितनी घर की और हमारी खुद की सफाई, क्योंकि सबसे ज्यादा इस्तेमाल हम इन्हीं चीजों का करते हैं। जैसे गेट खोलते वक्त जो डोर नॉब है उसका साफ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कोई चीज है जिसको हम बार बार हाथ लगाते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, उसका भी साफ होना बार बार बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज बाकी सफाई के साथ साथ क्यों ना इन चीजों की भी सफाई की जाए। मिलूंगी आपको कल इसी पते पर इसी समय। मैं हूँ आरजे खुशी,
1: 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

आज हमको तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा।

0: हमारे सारे दुख का कारण है हमारी खुद की आकांक्षाएं। मैं हूँ आरजे खुशी। कैसे आप सब लोग? नया दिन बहुत बहुत मुबारक हो। और हर दिन की तरह आज भी हम अपने आप में कुछ पॉजिटिव बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। मैं भगवत गीता जब पढ़ रही थी तो मैंने एक चीज देखी। अपनी पूरी बात कहने के बाद, सब कुछ समझाने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, यथेच्छसि तथा कुरु। यानी कि मैंने बता दिया क्या सही है क्या गलत है, लेकिन तुम्हें क्या करना है वो तुम ही जानो। मैं अपनी कोई बात तुम पे थोपूंगा नहीं। और सोचिए, यही हम लोग मात खा जाते हैं। हमने अगर किसी को कुछ समझा दिया तो हम चाहते हैं कि वो हमारी बात माने ही माने। यहीं पे अगर हमने सामने वाले को फ्रीडम दे दी, अगर उसको उसके हिसाब से रहने दिया, तो शायद वो हमारी बात जरूर मानेगा। सोच कर देखिए। लौट के आती हूँ थोड़ी देर में। मैं हूँ आरजे खुशी।
1: 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: सर्दियाँ बहुत सही वक्त है अपने आप को हेल्दी रखने का। मैं हूँ आरजे खुशी। हाँ, थोड़ा बहुत स्ट्रगल तो होता है, लेकिन अगर हम चाहें तो अपने आप को बहुत हेल्दी रख सकते हैं। देखो, गर्मियों में तो हम लोग विटामिन डी नहीं ले सकते, यानी कि सूरज के नीचे नहीं बैठ सकते, लेकिन सर्दियों में हमारे पास में मौका है जिसको हमें गंवाना नहीं है। और अगर आपके घर में थोड़ा सा तिल का तेल है ना, तो अपने घुटनों पे, अपने बालों में, अपने सर पे आप तिल का तेल लगाकर बैठ सकते हैं। इससे जिस भी प्रकार के दर्द आपको होते हैं वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे। इनफैक्ट मैं तो बोलूंगी कि अगर घुटनों में दर्द रहता है या कोई घर में बड़े बूढ़े हैं या खेलते वक्त कोई इंजरी हो गई है तो भी तिल का तेल आपके बहुत काम आएगा। तो तिल का तेल इस्तेमाल करें और धूप में जरूर बैठें। केवल सर्दियों में आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है ना, सब ठीक हो जाएगी। लौट के आती हूँ थोड़ी देर में। मैं हूँ आरजे खुशी।
0: 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

जब हम बड़े हो जाते हैं ना तो बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हैं चीजों को लेकर। मैं हूँ आरजे खुशी और मुझे ऐसा लगता है जब भी हमको मौका मिले ना छोटे बच्चों के साथ में खेलने का, उसको गंवाना नहीं चाहिए। देखिए, हम सबके अंदर एक छोटा सा बच्चा है जो खुल के जीना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदारी के बोझ तले हम बहुत ज्यादा सोचने लगे हैं और केवल सोचा विचार ही करते करते हम लोग जीना भूल गए हैं। तो जब भी मौका लगे अपने आसपास वाले बच्चों के साथ में जरूर खेले, ये आपको अंदर से बहुत यंग फील कराएगा, यानी कि आप अपने अंदर के बच्चे से मिल पाएंगे। ये आपको खुशी भी देगा और जब आप मन से खुश होंगे ना तो ही आप बाहर का काम बहुत अच्छे से कर सकेंगे। आजमा कर देखिए। मिलूंगी कल इसी पते पर इसी समय। मैं हूँ आरजे खुशी।

0: मैजिक रेडियो DS 89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6।

0: मैजिक रेडियो DS 89.6
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे।

0: मैजिक रेडियो DS 89.6
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो
1: DS 89.6
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 रेडियो DS

0: मैजिक रेडियो डी एस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन
2: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
3: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना।

0: 3, 2, 1, 0.
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस

0: 3, 2, 1, 0.
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: 3, 2, 1, 0.
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: 3, 2, 1, 0.
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना।

0: 3, 2, 1, 0.
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: 3, 2, 1, 0.
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: 3, 2, 1, 0.
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस

0: 3, 2, 1, 0.
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: 3, 2, 1, 0.
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: 3, 2, 1, 0.
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: 3, 2, 1, 0.
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: 3, 2, 1, 0.
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: 3, 2, 1, 0.
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: 3, 2, 1, 0.
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: 3, 2, 1, 0.
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: 3, 2, 1, 0.
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस।

0: हाँ जी खबर पक्को है। वो दुर्गा आज रात अपने यार के साथ मेले में जाने वाली है।
1: आज की रात उस लौंडे की आखिरी रात होगी। राणा से दुश्मनी लेने का मतलब है ये बंदूक और उसका